अरे बच्चे तो खुदे के हुए फिर रोबा रहा कुछ किचे खेल में दारे लो मेरे शवा दिमाग के